0: बड़े फख्र के साथ आपके सामने इस देश का एक मशहूर कलाकार पेश कर रहा हूँ।
1: LEM FM 106,6 Gorleci, 103,8 Polkowyci. LEM FM to twoje radio.